0: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन द साउथ ईस्ट USA।

हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।
1: शुद्ध

0: तो आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH स्पेस DESI स्पेस RADIO और वहाँ पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।
1: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ,
2: लेग पीस नहीं है
3: चिपड़ा।
4: आइए सब लोग कैंट्री में आ जाइए। चलो चलो चलो चलो। सो लेट्स द संगीत बिगिन। इस म्यूजिकल नाइट में खाली सॉन्ग्स नहीं होंगे, डांसिंग भी होगी और होगा कंपटीशन। अब ब्राइड की टीम जीतेगी या दूल्हे की, ये तो तभी पता चलेगा जब दुल्हन और दूल्हे के रिश्तेदार यहाँ पे आके डांस करेंगे। अंकित जी आइए ना, आपके शक्ल देख के लग रहा है बहुत जबरदस्त डांस करते होंगे।

to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉच वॉट यू थिंक. आज का सुविचार, आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी. यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए. यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए. और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए.

हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो। इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स। सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com। इट इज info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको
1: गुड मॉर्निंग नैशविल, आज की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो, USA's नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। देश से दूर पर दिल के करीब।

बंपर टू बंपर शो में हम सुनाएंगे आपको सुपर से भी ऊपर वाले गाने टू मेक योर मॉर्निंग रिफ्रेशिंग। तो सुनते रहिए हमारा बंपर टू बंपर प्रोग्राम फ्रॉम 7 AM टू 9 AM सेंट्रल टाइम जोन ओनली ऑन शुद्ध देसी।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

बम्पर टू बम्पर शो में हम सुनाएंगे आपको सुपर से भी ऊपर वाले गाने टू मेक योर मॉर्निंग रिफ्रेशिंग। तो सुनते रहिए हमारा बम्पर टू बम्पर प्रोग्राम फ्रॉम 7 AM टू 9 AM सेंट्रल टाइम जोन ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टालिसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग शुद्ध देसी रेडियो.

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो। देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one Bollywood radio station, देश से दूर पर दिल के करीब। You are listening to America's number one Bollywood radio station, शुद्ध देसी रेडियो, देश से दूर पर दिल के करीब।

0: सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

0: आप सुन रहे हैं मेटल टेन।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हो आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो और इवनिंग रश आवर का प्रोग्राम चक्का जाम।
2: कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: किसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज।

0: सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?
1: खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टॉलेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।

शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: हिंदुस्तानी आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: सौदागर है यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ

0: आदमी कहीं भी रहे दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।
1: लाइक एंड फॉलो अवर FB पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक।

0: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइल।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। हाय, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आप किसी को पसंद करें, उन्हें चाहें, उनके लिए जो चाहें आप करें, प्यार करना बहुत आसान होता है। दिल का किसी को पसंद करना, बस कोई दिल में यूँ घर कर जाए, उनकी बातें, उनके बारे में हमेशा सोच सकते हैं हम लोग। हमें किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी का रुतबा अच्छा लगता है, किसी का बस पास रहना, अच्छा महसूस करना हमें अच्छा लगता है कि वो बस हमारे आस पास रहें, तो दिल खुश रहता है। जैसे उनके साथ रहने से वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, कट जाता है। आप किसी को प्यार करें, प्यार करना एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत आम बात है। कहते हैं लोग कि बड़ी खास बात है, लेकिन मुझे लगता है बहुत आम बात है। दिल किसी को भी चाह सकता है, लेकिन उस दिल को कोई प्यार करे, यानी कि आप किसी को प्यार कर सकते हैं लेकिन आपको कोई प्यार करे, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार करना आसान है, लेकिन कोई आपको प्यार करे उतनी ही शिद्दत से, ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे ऐसे लगता है। और एक दूसरी बात यह भी है कि आप किसी से प्यार करवा नहीं सकते अपने आप को। यू कांट मेक समवन फॉल इन लव विद यू। और होता ऐसा है कि ये बात समझते समझते हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम किसी से प्यार नहीं करवा सकते अपने लिए, राइट? ये करते करते काफ़ी जब देर हो जाती है तब हमें बात समझ में आती है। दिल यही चाहता है कि कोई हमारे दिल का हाल पूछे, हमारा दिन कैसा बीता था ये पूछे, कुछ प्लान करें हमारे लिए। कोई तो दुनिया जहान में एक ऐसा शख्स हो जिसे हमारी परवाह हो, और जिसके लिए जो हमारे ये आंसू हैं ये मोती की तरह हों, और चाहते हैं कि ऐसा कोई हो इंसान जो दुनिया में हमारे लिए लड़ जाए, हमसे भिड़ जाए दुनिया में, किसी से भी हमारे लिए। लेकिन असलियत ये है कि ऐसे कुछ होता नहीं है, ये सब मिलता नहीं है, राइट? और हम किसी को पसंद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें पसंद करे और जिस इंसान को हम पसंद कर रहे हैं वही इंसान हमें पसंद करे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और भी बात है कि जब हम किसी के साथ प्यार कर रहे होते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करें, और इन रिटर्न वी ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम। हमें ये लगता है कि हम जैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं और हम उनके साथ जैसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे साथ वैसे ही प्यार करना चाहिए, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। सौदा कह सकते हैं इसको, मोल तोल कह सकते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम नहीं हम करते आजकल के ज़माने में, और हम वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अनकंडीशनल लव हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई रहती हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में हम चाहते हैं कि कोई और भी हमारा इंतज़ार करे, कोई हमसे भी बात करे, कोई हमारी परवाह करे, चिंता करे, पूछे कि तुम्हें क्या गम है, क्या परेशानी है, मसला क्या है, दिल के साथ चल क्या रहा है। कोई तो हो जो ये सोचे, ये जाने, ये पूछे कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम क्या चाहते हो। पर ये कोई नई बात मैंने बता नहीं रही हूँ आपको, ये बहुत पुरानी, सदियों की पुरानी समस्या है, प्रॉब्लम है। होता नहीं है ना ऐसा लाइफ में। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि हम किसी से प्यार करें ये आसान है, लेकिन कोई हमसे प्यार करे ये होना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है कि ये आप करवा नहीं सकते हो, हो जाता है खुद ब खुद। कोई करे प्यार तो ठीक है, करवा तो नहीं सकते ना, लेकिन दिल तो मानता नहीं। तभी तो कमबख्त इश्क है ना, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ बदलें, कुछ एडजस्टमेंट करें लाइफ में, और ये चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए एक पूरा का पूरा पुल है, ब्रिज है पार करना चाहते हो, तो कम से कम दो कदम तो वो बंदा भी आगे हमारे लिए ले ले। लेकिन तकलीफ़ होती है ना कि जब हम तो पूरा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगला बंदा दो कदम भी नहीं ले रहा, तो तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, क्योंकि
कोई सभी हम सभी लोग ये चाहते हैं ना, दिल के किसी भी कोने में भले हम कुछ भी बोलें, चाहते तो हम यही है ना कि हमें प्यार मिले, कोई भी हमें चाहे, कोई हमें भी चाहे, राइट। दुनिया का, मैं जैसे कि बोला कि सबसे मुश्किल काम नहीं, नामुमकिन काम है कि किसी को अपने प्रति प्यार महसूस करवाना। हो ही नहीं सकता, आप कितनी लाख कोशिशें करवा लें, आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते, आप किसी को प्यार में पढ़वा नहीं सकते। वो एक वो जिन की कहानी भी अगर याद है, तो जिन बोलता है कि मैं तुम्हारे सब जो इच्छाएँ हैं वो पूरी करूँगा, लेकिन ये जो तीन इच्छाएँ उसने बोली थी कि किसी को मार के जिंदा नहीं कर सकते, और किसी के लिए मन में प्यार नहीं जगा सकते, और एक और कुछ और था, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप पसंद आ सकते हैं किसी को, आप किसी को पसंद करवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में लोगों को पसंद आ सकती हैं, लेकिन प्यार, प्यार बहुत मुश्किल है कि प्यार करवाना बहुत मुश्किल है। तो इसी बात पे आपको सुनाती हूँ बहुत खूबसूरत सा गाना। ये मैंने प्रोग्राम बना रही थी तब मैंने ये गाना सुना, पहली बार सुना, बड़ी नई फिल्म का गाना है, दिस स्टक इन माय हेड, मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ये गाना सुनें और बताएं कैसा लगा।

तुम पे तो हम मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना, मुझे लगता है कि मेरे आज के टॉपिक के लिए बहुत ही एप्ट गाना है ये, फ्रॉम द मूवी बोले चूड़ियाँ। और आगे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आज की, प्यार करना कितना आसान है लेकिन आप के प्रति, आपके तरफ किसी का प्यार होना और आपको प्यार मिलना कितना मुश्किल है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप किसी को प्यार करवा नहीं सकते हैं। और अगर हम देखें ऐसे लाइफ में तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप किसी का पसंद का सब कुछ करें जो जैसा अगला चाहता है आपको बिल्कुल, अगर आप वैसा बन जाते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए उन्हीं के मन में जगह बन जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा स्कैम है, ये ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर आपके खूबसूरत लगने पर और या फिर आपके बदल, अपने आप को बदल लेने की वजह से कोई आपको प्यार करने लगता है या आपको लगता है कि आपकी अहमियत बढ़ गई है थोड़ी ज़्यादा, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर तो फिर दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, राइट, तो फिर उनकी ज़िंदगी में तो बहुत प्यारी प्यार, बेशुमार प्यारी भरा होता। पर ऐसे होता नहीं ना, क्योंकि खूबसूरती की वजह से लोग आपको नोटिस कर सकते हैं, वो आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, नोटिस जैसे कि मैंने बोला कि कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार प्यार नहीं हो सकता कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत आपने बना लिया, दूसरे की पसंद के हिसाब से बना लिया, तो कोई आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट्स अटेंशन, अट्रैक्शन, ब्यूटी डजन अट्रैक्ट लव, प्यार नहीं मिलता खूबसूरती से। और अगर अपने आप को बदल लेने की वजह से हमें कुछ मिलता है तो वो अप्रिसिएशन मिल सकता है, लोग तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ ये आपने अच्छा किया अपने बारे में, अपना फिगर बड़ा अच्छा मेंटेन कर लिया है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं वगैरह वगैरह, या कुछ आदतें आपने चेंज कर ली हैं, तो नोटिस करेंगे लोग, तारीफ़ें हो जाएंगी, लेकिन क्या प्यार मिलेगा? और मैं ये बात कर रही हूँ सच्चे वाले प्यार की, ऐसे जो अफेयर्स होते रहते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सच्चा वाला प्यार क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। और इससे तो बेहतर है कि ख़ुद को बदलना ही है और किसी का प्यार पाने की वजह से या उसके लिए बदलना है, तो इससे तो है कि आप बदलें और आप खुद से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव, कहते हैं ना, कहते हैं कि किसी को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखो। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो आपको प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेल्फ लव में क्या बुराई है? थोड़ा सा फिलोसफिकल है लेकिन अगर आप सोच के देखें तो मतलब आप किसी के लिए अपने आप को बदलो, नहीं इसलिए नहीं कि वो आपके प्यार में पड़ जाए या फिर उनका प्यार पाने के लिए, अगर खुद ब खुद प्यार में हो रहा है, अगर आप खुद ब खुद कुछ करना चाहते हैं अगले इंसान के लिए विलिंगली नेचुरली, अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप करें उनके लिए अपने पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो के कुछ बदलाव है तो वो डिफरेंट है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बदलना था क्योंकि प्यार मिले वो गलत है, वो प्यार की सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। बात ये कर रही हूँ मैं कि कितना भी आप बदलें, कितने खूबसूरत हैं या क्या है चेंजेस लाएं, इन सब चीज़ों से प्यार नहीं होता। और अगर वो लगता भी है आपको कुछ कम समय के लिए कि प्यार हो गया, तो वो बहुत ऐसे मोमेंटरली होता है, वो तो प्यार होता नहीं ना, जो ख़त्म हो जाए वो प्यार ही कैसा, राइट, वो प्यार तो हमेशा के लिए होता है। तो सोचिए इसके बारे में कि क्या बात मैं कर रही हूँ, और सुनिए ये दो बहुत ही खूबसूरत से गाने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं आज हम कमबख्त इश्क के बारे में, प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे प्यार करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन किसी से प्यार करवाना नामुमकिन है। किसी का आपको प्यार करना कितना ही मुश्किल है, मगर हमने आसपास ऐसी अपनी बहुत सारी अमेजिंग लव स्टोरीज देखी हैं, बहुत सारी ऐसे मोहब्बतें देखी हैं। कितने लोग हैं हमारे आसपास जिनको बहुत प्यार हासिल हुआ है, प्यार मिला है, और हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार इसको प्यार कैसे मिल गया, इसको भी प्यार हो गया, राइट? तो दिल एकदम से ऐसे सोचने लगता है कि इसको कैसे मिल गया, और हम फिर ना वजह ढूंढने लगते हैं कि कारण ढूंढने लगते हैं कि क्यों मिला प्यार, क्या वजह क्या हो सकती है। हो सकता है कि जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि कोई बहुत खूबसूरत है, उसकी वजह से किसी को प्यार मिल गया होगा, किसी के पावर से किसी को प्यार मिल गया की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, किसी के नाम की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, या फिर कोई भी वजह हो सकती है किसी को प्यार करने की। लेकिन कुछ भी बोलो, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, जब प्यार मिलता है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत खुशी मिलती है। और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी प्यार के भूखे, हम सभी चाहते हैं कि प्यार मिले, मगर इस जनरेशन की जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, प्यार का मामला थोड़ा सा तंग होता है यहाँ पे, जहाँ पे 15 सेकेंड की रील को लोग 3-4 सेकेंड का वक्त देते हैं, 3-4 सेकेंड का अटेंशन देते हैं, तो 2 सेकेंड का अटेंशन क्या दिल को मिल सकता है? आजकल की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वक्त ही कहाँ है लोगों के पास, समय नहीं है ना। कहाँ, कौन, किसके लिए, क्यों, क्या मिल रहा है, कोई क्यों करे ना, लोग अपने आप के साथ में नहीं रहते, किसी और के साथ कैसे रह पाएंगे, सोचिए इस बात को। और ऐसा नहीं है कि मैं जनरेशन, नई जनरेशन की बात कर रही हूँ तो पुरानी जनरेशन के लोग हैं या जो हैं सब बड़े परफेक्ट थे, परफेक्ट लव स्टोरीज रही हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, और बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी कमियाँ ख़राबियाँ हैं, पर इंसान है, हम भी सोचते हैं कि क्या कभी कोई हमारे लिए भी जागेगा, कोई हमारे लिए भी कुछ करेगा, क्या हमारे लिए भी कोई फ़ोन का इंतज़ार करेगा, क्या कभी कोई हमारे बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगा, क्या दिन के अंत में कोई पूछेगा कि तुम्हारा दिन कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या कभी कोई बिना पूछे, बिना हमारे कहे, ये आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं ये जान पाएगा। ये सब हम ही चाहते, सब हमारे मन की बातें, सब ये मैं नहीं, आप नहीं, सब जो लोग भी सुन रहे हैं, सब सबके दिल में यही बातें चल रही होती हैं, सबकी इच्छाएं एक ही हैं, और वक्त की कमी बोलें या जो भी बोलें, जहाँ या किस्मत बोलें या क्या बोलें, कि जहाँ हमें चाहिए होता है प्यार, वहाँ पे हमें मिलता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको प्यार मिल पाना और अगर उसी एक इंसान से प्यार मिलने की बात हो जैसे कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर तो अगर वो मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, तो उसको खुशकिस्मती कह सकते हैं, उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद बोल सकते हैं, नेमत बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कितना, कितने परसेंट होता है ऐसा कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं हमें वहाँ से प्यार मिल जाए? तो प्यार मिलना बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे पता ही है कि ये जो गाने मैं सुना रही हूँ आपको, ये गाने कैसे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, बहुत मिलते जुलते गाने हैं, बहुत अच्छे लग रहे होंगे गाने आप लोगों को भी, बहुत ही सुंदर सा। मैं अगला ये वाला गाना लेके आई हूँ आपके लिए, पुरानी मूवी है 1985 की मूवी गुलामी, उसका गाना सुनाती हूँ मैं आपको, और सुनिए और बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं हम आज कमबख्त कमबख्त इश्क प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मसला क्या है इसका, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में, प्यार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता क्या है। अगर मैं थोड़े पुराने समय की थोड़े से पुराने समय की बात करूं तो शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। सच है ये बात कि बहुत से लोग जिनकी शादियों को बहुत बहुत साल हो जाते हैं, 20, 25, 30, 35 साल हो गए शादी के, आप एक कमरे में एक बिस्तर पे सोते हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन रिश्ते निभा रहे हैं वो, लेकिन क्या उनके बीच में प्यार है, क्या वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, या वो रिश्ते निभा रहे हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, ड्यूटी कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं साथ में रह के, फ़र्ज़ निभा रहे हैं अपने। फिर जब वो अपने अगले जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि उन्हें प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें प्यार क्यों नहीं मिला, कि अब हम अपनी जनरेशन की बात करें, आगे नई जनरेशन नई पीढ़ी की बात करें, तो उन्हें पता नहीं है, उन्हें प्यार पता नहीं है, और उन्हें समझ नहीं आता कि प्यार को रिस्पॉन्ड कैसे करें, कैसे उसका कैसे उसको समझें, या क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता ना कि उनको कि इसका जवाब कैसे देना है, कैसे रिएक्ट करना है प्यार के ऊपर में। और ये पूरी की पूरी एक जनरेशन है, शायद मुझे लगता है उसको प्यार के मायने नहीं पता है, वो फटाफट वाले अफेयर, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दैट, मुझे वो समझ में नहीं आते। पर शायद उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद बचपन में देखा है कि रिश्ते संभालना क्या है और जिम्मेदारियां संभालना उन्होंने देखा है और सीखा है, उन्होंने शायद बचपन में से प्यार देखा ही नहीं। और अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में हमारी माओं के लिए, माँ के लिए प्यार क्या था, उनके लिए था कि हमारी खुशी और हमारी अच्छी सेहत, और पापा के लिए खुशी है कि हम अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, हमने प्यार का ये रूप देखा है। और तो जो जनरेशन है वो उसको प्यार का यही मतलब समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो इतने सालों से साथ रहने वाले पति पत्नी माँ बाप, उनका साथ में रहते रहते उन्हें इतना काम करने की, जिम्मेदारियों की इतनी आदत हो जाती है कि उस चक्कर में शायद उनका प्यार कहीं खो जाता है। और क्या बोलूँ कि आजकल की जनरेशन के बारे में, अगर मैं ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रही हूँ, पहले के ज़माने की देख रही हूँ और अभी की मैं बात कर रही हूँ, तो आजकल की जनरेशन बहुत सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी करना चाहती है, फटाफट टाइम ही नहीं है। जैसे कि मैं रील की बात करी थी कि रील देखने का टाइम नहीं है, फटाफट स्क्रॉल करते जा रहे हैं, भागती दौड़ती ज़िंदगी वो कुछ डिफरेंट ही है। ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, सब कुछ फटाफट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, ट्रैवल करना पसंद है कि कहीं कहीं चले जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं कि

मुझे। और ये लेकिन ये कश्मकश हमेशा बनी रहती है किसी भी जनरेशन की हो, कि हम किसी को चाह रहे हैं तो क्या वो हमें चाह रहा है, पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। पसंद करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पसंद तो आप बहुत लोगों को आ सकते हो और आप बहुत लोगों को और बहुत चीज़ों को पसंद कर सकते हो, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो असली वाला प्यार होता है जिसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कि चांद पर तो आप जा सकते हो, चांद पे जा सकते हैं, जहाज उड़ा सकते हैं, पर किसी को अपने प्यार में नहीं डाल सकते। मैं घूम फिर के वही बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बात आपके दिमाग में डाल देना चाहती हूँ। और सुनिए, ये बहुत ही खूबसूरत से दो गाने, बहुत बहुत प्यारे गाने हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता।

आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट शो विद मी शालिनी। बात कर रही हूँ आज मैं प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। प्यार वो है कि जो जब कोई इंसान आपकी गलतियों से, आपकी खामियों से, आपकी कमियों से भी प्यार करे। पसंद करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर प्यार, प्यार कुछ अलग है, उसका उसकी कैटेगरी अलग होती है। आपके आपने कोई मेकअप किया, आप तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपके बालों में तेल लगा हुआ, आपने नहाया है कि नहीं नहाया है, शक्ल सूरत बदसूरती खूबसूरती, इससे प्यार का कोई लेना देना होता नहीं है। खूबसूरती के साथ प्यार का कोई लेना नहीं है, अच्छाई के साथ प्यार का कोई लेना देना नहीं है, बड़े बैंक बैलेंस के साथ, तो परफेक्शनिस्ट होने से, इन सब से प्यार से कुछ संबंध होता नहीं है असल में कुछ भी। अगर सब कुछ बहुत खूबसूरत कोई इंसान हो और बहुत ही परफेक्टली अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहा है और सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे तो प्यार मिल जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो परफेक्शनिस्ट हैं और सब कुछ सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से उठते हैं, एकदम किताबी तरीके से जो बताया गया है उनका बिहेवियर और उनका काम सब अप टू डेट, सब परफेक्ट रहता है। लेकिन ऐसा हो तो उन्हें भी प्यार मिला होता, मिलना चाहिए सारे लोगों को जो ठीक तरीके से करते हैं काम, मगर ऐसे नहीं होता ना। बिकॉज आई थिंक दैट लव इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट, लव इज़ व्हेन समवन एक्सेप्ट्स ऑल योर रॉन्ग्स एंड ऑल एंड स्टिल एक्सेप्टिंग योर रॉन्ग्स एंड बैड थिंग्स स्टिल दे फॉल इन लव विद यू एंड दे फॉल इन लव विद योर इम्परफेक्शंस। मुझे लगता है कि वो असल में सही वाला प्यार है। असल प्यार की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ जो आजकल हमें हर जगह दिखाई पड़ जाता है आसपास। ये मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपकी आँखों से आंसू जो टपक रहे हैं ये सामने वाले को पता हो, बिना बताए बिना कहे उसे पता हो कि आप क्यों उदास हैं। ये वो वाला प्यार है जो मणिरत्नम की जो मूवी है दिल से, उसमें मनीषा कोरेला बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होती हैं और शाहरुख खान फिर भी उन्हें बचाने जाते हैं, फिर भी उन्हें मदद करते हैं, फिर भी उसको प्यार करते हैं। दिल से मूवी में ही मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। और ऐसे वाले प्यार की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपकी गलती के साथ भी उसे प्यार हो और आप उनकी गलती के साथ आप जीना चाहते हो, मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। उनके गलत को आप स्वीकार करें, क्योंकि प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, प्यार में सब अच्छा ही होता है। अल्फाजों के दीवाने तो आपको बहुत मिलेंगे, प्यार उससे करो जो कि आपकी खामोशी को समझ सके।

दिल से रे, फ्रॉम द मूवी दिल से। प्यार की ये दौलत जिनके पास में है वो कितने खुशनसीब और खुशकिस्मत लोग हैं ना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा ज़िंदगी में, इस लाइफ में सही किया होगा, नहीं तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा उन्होंने अच्छा, इसीलिए ऊपर वाले ने उनको ये सौगात प्यार की दी कि जिससे वो प्यार करते हैं उनको उसी से ही वापस में वो प्यार मिल रहा है और उनके झोली में ये खुशियाँ डाल दी ऊपर वाले ने। और बहुत सारे लोग हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ज़िंदगी में कि कब ये ठप्पा लगेगा प्यार के उन पर, उनके ऊपर, कब उनका, उनको तो प्यार है जिनसे, उनका प्यार भी उन्हें वापस मिलेगा। तो अगर रिश्ता अगर दिल से है तो मन कभी नहीं भरता, बस ये बोलना चाहूँगी। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, ये एपिसोड पसंद आ रहा है, तो मुझे और रेडियो को ज़रूर फॉलो करें ताकि नेक्स्ट वेंसडे हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आप मेरी और अच्छी बातों को मिस ना कर सकें। तो रेडियो को, शुद्ध देसी रेडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं शालिनी के नाम से, और इंस्टाग्राम पर RJ के नाम से फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। मैं सुनाती हूँ ये आपको आखिरी वाला गाना और लेती हूँ अलविदा इस प्रोग्राम से। और आप सुनिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए शुद्ध देसी रेडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। हाय, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

सुन रहे हैं नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड